पै संबद सतरह सहस पणिजय अर्ध सस फुण तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारह तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्दन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताय सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा नी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखा दा माननी वा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दितार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे माम नेताणिया दे ताम ने ओटिया दी उड़ने आसरिया दे आसरा तन तन साहिब

परमात्मा दे नाल हो जावे, परमात्मा दे नाल उन्हां दा मेल हो जावे। फिर उन्हां दा वैसाख दा महीना इह सोहणा बन जांदा है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। जेठ दे महीने विच की करना चाहिदा?

परमात्मा जी जे तुहाडी सिफत लिखण दे लई गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे जे तुहाडी तुहाडे गुण लिखण दे लई सारी धरती का कागज बना लिया जाए हुण सारी धरती तो बहुत वड्डी है धरती का कागज बन के आ गया हुण उन्नी सियाई भी चाहीदी है सियाई कित्थों लैके ये कागज तो बहुत वड्डा है धरती का फिर पातशाह कहिंदे सत्ता समुंदरां दी सियाई तार कर ली जाए धरती का कागज बन के आ गया परमात्मा की सिफत लिखण दे लई सत्ता समुंदरां दी सियाई बन के आ गई हुण कलमा कित्थों लैके आईए कलमा भी चाहिए ने बहुत सारिया जिदे नाल परमात्मा की सिफत लिखी जा सके फिर पातशाह कहिंदे सारे संसार की बनस्पति दियां कलमा घड़ लईआं जाण तीन चीजा आ गई धरती का कागज बन के आ गया सत्ता समुंदरां दी सियाई बन के आ गई सारे संसार की बनस्पति दियां कलमा घड़ के आ गई हुण उन्नी तेज बोले कौन कोई बोलण वाला भी तो चाहिए ना जिहड़ा बड़ा बोलण विच बड़ा माहिर होवे जिहड़ा थके ना फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के ज्ञान तो बलवान जाइए बड़ा वड्डा ज्ञान है कुरबान जाइए फिर पातशाह कहिंदे माता सरस्वती बोलण विच बड़ी चातुर है बड़ी माहर है बोलण दे अंदर सरस्वती माता इन्ना तेज बोलती है थकती नहीं पातशाह कहिंदे माता सरस्वती आ गई परमात्मा की सिफत बोली जा रही है हुण माता सरस्वती पातशाह कहिंदे ते बहुत तेज बोलती है उन्ना तेज कोई लिखण वाला भी तो चाहिए हुण लिखण वाला कित्थों लैके फिर पातशाह ने उहदा भी जिक्र किया कहिंदे गणेश जी लिखण दे विच बड़े माहर ने जिहड़े साडा हिंदू भाईचारा ना साडे हिंदू वीर ने ये इन्हां दी आस्था है जदों ये नवा वाही खाता लाउंदे ना जी नवा खाता लाते ने साल बाद ते नवे खाते दे अंदर आरंभ दे अंदर ना जी एक गणेश दा क्रॉस बनाते वेख लियो कदी इन्हां दी आस्था है मुबारक है हर एक दे अपने अपने धर्म की आस्था है भी सारा साल साडे खाते भरे रहन वही खाते भरे रहन क्योंकि गणेश जी लिखण विच बड़े माहर ने माता बड़ी तेज है बोलने विच पर पातशाह कहिंदे पंज चीजा आ गई हे मेरे परमात्मा जी हे पातशाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਲਮਾਂ ਘਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈ ਕਰੀ ਜੈ ਹੈ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे तहाए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बन के छकिया देख तलाई तेग वाहि देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सुवासां सांग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटाल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पहुँ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे माम निताणियां दे ताम ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत कीती है आप जी दी पावन हजूरी में शाम दे सुंदर दीवान सजे हन सजे हुए दीवान विच गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी दे कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होइआं पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दीआं दर हाजरीआं तिल फुल भेटावां प्रवान करनीआं दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी चढ़िया होया जेठ दा महीना सुखां नाल बतीत होवे सब परिवारां विच सुख शांति नाम दीआं दातां बख्शनीआं। अरदास बेनती है संगतां वल्लों हरिंदर सिंह दी तंदरुस्ती वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रार्थ रखना चन्नन सिंह दे परिवार वल्लों कारोबार दी चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रार्थ रखना किरत कमाईआं विच वाधे पाउणे दीपक अरोड़ा दी तंदरुस्ती वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रार्थ रखना तजिंदर सिंह ते जसविंदर कौर वल्लों सच्चे पातशाह जी अपने बेटे प्रभ वीर सिंह दे जन्मदिन ते आप दा शुकराना करदिआं अरदास बेनती चढ़दीआं कला बख्शनीआं सच्चे पातशाह जी गुरमंदे दान विद्या दे दान बख्शणे सब दीआं गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां बख्शियां खजानिआं विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है
ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਨ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਛਕੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਮਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru.

प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ गय सिमरन अंधन जागे, प्रभ गय सिमरन भाव न व्याप, प्रभ गय सिमरन दुख न संताप।

प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु का सिमरन दरगह मानी प्रभु का सिमरन हो सो भला प्रभु का सिमरन सफल फला से सिमरे जन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते उच्चा प्रभु का सिमरन उदरै मुच्चा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु का सिमरन सबके सुजै प्रभु का सिमरन नाई जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा

तनमंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन दे लागे जिन्हें आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पार उपकारी प्रभु को सिमरे दिन सदबलहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे दिन सुख बेहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन आनंद गनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहत चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन कहो प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जदी दाते हर सिमरनी चहु कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल आकारा हर सिमरन मया निरंकारा कर कृपा सिया बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर दुख भंजना घटग

मनमथ उस्ते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरगी छाया सो रंग लाभ्यो बिन सियो मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ सियो जो लावे ने ताकू हाथ न आवे केहे मन हर के राम की प्री सुखदाई

दर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टिप्रत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

धंधा ब्रह्मज्ञानी ले ताप बंधा, ब्रह्मज्ञानी गावे सो फला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार, नानु ब्रह्मज्ञानी जपा सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी का एक रंग, ब्रह्मज्ञानी का बस प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार,

ब्रह्मज्ञानी का बड़ बरदा ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी।

तारे सर्वरू का अवखत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कृत ना पाइय धर्म नानक तिसमलै सिलख्या तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दाद संतन भाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गे प्रवान अपने दास को आप कृपा कर दास को सब सोजी पराय सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तम हिताव है।

रे सर्व पावे सगले प्रतारे अनग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार अनग जतन करे आत्म नहीं दरबार हर दुर्गे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब उसको सुख नाही कोए जबे जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरप्रसाद नानक हों छुटै सहज घटे लक उड़तावे तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनग भोग विख्या के करै न तृपतावै खब खब मरै बिना संतोख नहीं गौ राजै सुभन मनोरथ ब्रेथे सब गाजै नाम रंग सर्व सुख होए पटभागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव करण करावन करणे हास कियात कहां विचार जैसी दृष्टि करे तैसा हो आपे आप आप रब सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हूं का संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नानक सदी रह समाये आप देसा समझे आप आपे रचया सबके साथ आप किनू अपन विस्तार सब का उसका वो करने हा उसते भिन्न कहो किशोए धान धनंतर एक का सोए अपने चलता आप करने हार कवता करे रंग आभार मन में आमन अपने माहे नानक कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गना बखयानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किन्ना बरला चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटगण सुनी सरबन बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार राष्ट्रपति संत के दुखन यार जा कटा है संत के दुखन जमते नहीं छुटा है संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलिन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरह संत कै दुखन दे मुख पवै संतन गै दुखन काग जो लवै संतन गै दुखन सर्व जोन पाए संत गै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन गै दुखन तृष्णा में जलै संत गै दुखन सब को शलै संत गै दुखन ते सब जाए संत गै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ताऊ को राहे नानक संत पावे ता वही विगत पाहे संत का नंदक मात ताई संत का नंदक ढिगन पाई संत का नंदक मात हारा संत का नंद संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज तेहीन संत का नंदक दुखिया अरदीन संत के नंदक को सर्व रोग संत के नंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत भाव है तो उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी कौ सब त्यागे संत का दुखी मह अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन में मरे संत की दुख ना सुख दे डरे संत के दुखी को नाई ठाऊ नानक संत भावे ता लहे मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटा है संत का दुखी किते काज न पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किशना है आपन भी जापे ही खाहे संत के दुखी को बरना रखन हार नानक संत भावे ता लय उबार संत का दुखी एवं बिल लाए जो जल भी होण मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र ने त्रप है संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत नंदका धुरी पया नानक जो तस भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ो पै जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय संत के दुखी की पूजना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना तृष्टा कोय जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोहे नानक जाने सच्चा सोहे सब गढ़ तिसके ओ करने हार सदा सदा तुसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो सास गिरास
ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀ ਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਗੋ ਥੀਆ ਬਿਨਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਰ ਦਸ ਦੂਸਰ ਕੌਮ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਬਟਪਾ

जाए अष्टपदी मानु की टेक वृति सब जान देवन देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अगाए बहुरना तृष्णा लागे आए मारे राखे एक आप मानु कै कृष्णाई हाथ जिसका हुक्म सुख हो जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे गोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुवेला कर लह जियो

सो सेवको किस तरह डरा जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोद सीजिया गुरु प्रसाद तस बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सुइय सूल न के जन्मे न किश मेरे आपन चलते आवि करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि आपे आप सगल मैं आप अनक जुगतराज थाप उथाप अविनाशी नाई किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा बंद सगल संसार उदरे तन बंद प्रभु के सेवक सगल उदार प्रभु के सेवक दुख विसार नापे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन प्रको उत्तम करमान जो किश करा सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा हो वै सोए करने हार पछाण है सोए प्रभु का किया जन्म ईठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे उपजेत समाहे समाये वे सुख निदान उन्हों बने आए आप सुभाव दिनो मान नानक प्रभजन एक हो जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जागे सिमरन उदरिया नानक तस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपार सकल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभे आपे आप अपन किया कशु न होए जसो प्राणी लोचा कोए तस्बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूपन तोय नाही मोहाय प्रभु की जोत सगल घट सोहाय तनवंता होय क्या को गरबाय जा सब के तस्का दिया दरबाय अत सूरा जय कबू कहावे प्रभु की गला बिना गहता भय जे को है बहे दाता अर्थ देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हैं और रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने असमन जो पा खान नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए विकास जो महाउद्यान में मार्ग पावे तो साधु संगमन ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांचो दूर नानक ईयर लोचा पूर मन मूर्ख काय बिर लाइये प्रभु लिखेगा लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार बर त्याग तू तसे चितार जो कश करे सोई सुखमान भूला काहे बिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लपट रहे हो रस रोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पद सेती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया था जब मान लियो मन मोर राम नाम हृदय में तोल लाद के बसंते संचाल वृत्याग विख्या जंजाल धन धन कहे सब गोए मकूजल हर दुर्गे सोए बापार बिरला बापारे नानक ताके सदबलहारे चरण साध गए तोये तोये पियर साधु अपना जियो साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान सा सेवा बट भागी पाइये सा संगर कीर्तन गाइये अनक बिगनते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रचाखे ओट गही संते इंद्र आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि बाहे प्रभु लिखे का लहना पाहे सबके तिस्का हो करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जब जन सदा सदा दिन रहनी सप्ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा सिखो राम दिया नानक सोजन निर्मल थी जा जाके मन गुरु की प्रतीत तिजन आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुकहत साची दृढ़ साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नानक सोजन सस माता सलोक रूप नारेख नारंग केश त्रिगुण ते प्रभिन्न तिसह बुझाए नानका दिसो वाय सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तू प्रीत्याग तिस्ते पर नाई किशकोय सर्व निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर घेर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भक्षांत सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन ए अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो घरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंधरूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए का हर तांका राज में राज जोग में जोगी दा मैं तभीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस्पुर का करे अंत ना पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे बगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जंदे जंदास नाम ध्यान से

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप सा मेद बिसारो चरण कमल हृदय उतारो करण कारण सो परम सम्राट दृढ़ गहो नाम अरबत ए धन संचो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को अनंत बाछे में सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सास शोभा भज हर की सरणी अनुक बावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अब कदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर कह राय दर्द सावते आवा ठाए धागो विघन ना लागे गोय जाके हृदय बसे हर सोए कलता ती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख भाव पवन से पूर्ण आस भगत पाया तंबर गास तत्कर जाय बसे विनासी कहु नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभु सेवा त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गाओ हे उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छूटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मनसत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुदमीत कुटम अर बनता अंत कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार अंत कहो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बा सारी जिंदी तस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो शीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिग जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुंद गैत रैत गत पावो सार पू सतर को नाओ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गाव तरी उतर समैल बिन सजाए होमै बिख फैल होए अचंद बस है सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल शाड सियानम सगली मना सास संग भामे सजदना अर पूंजी संज करो बेवहारी हां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आह एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक हर आ पूर्ण पूर्व प्रभ्याप अनक विस्तार एक ते भय

तर हे स्वाव मंथन अंतर यही स्वाव नेत्रोपेख दर्शको हेमान भिक्षे साध चरंतोय भक्त जना के मंत्रंग बिरला कहु पावे संग एक भस्त दीजे कर भया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रहा सर्व समाये प्रभ शां दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत परत पाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक नमक हर के गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बा भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बात मंदिरदा बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ दे होने वा सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक आपे फिर जा अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टि तप अपन तप कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब ऐर ब्रो किस संग कमाद जब इसका वर्ण चिन्हना जापत तब अर्घ सो कहो किसे व्यापत जब आपे आप अपन जब अपने आप आपार ब्रह्म तम हो कहा किस होत परमापन खेला वर्ती जा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुकद कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो गित ठाए जब आपे आप परि जो तर है तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभेखा तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपी चर्जा नानक अपन रूप आप जा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदी तय छल शिद्र लगत कहो कीस जय जो सुरपी जो संग समावे तय किसे भूक मंत्र बतावे करण करावन करने हार नानक करते का नाहे समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकला पे प्रवीण तय वेद गतेब कह कऊ चीन जब अपने आप आप उतारे तो सगन अब सगन कहा बिचार जय अपनु जा बनाप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय अशल अशेद अपे समाया मुहा किसे ब्याप दमाया आपस गुआ पिया देश ते गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपति आरा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेन दूज देव चा नानक आपस गुआ पे बहु चा जा ब्रजो प्रपंच अकार ते गुण मैं किन्नो विस्तार पापन तय पही कहावत कहु नरक को सुर्ग वंशावताल जाल माया जंजाल हमे मोह भरम व्यवहार दू सुख मान अपमान अंग प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संगोचे तो नानक एक ज अवगत भगत आप ज पसरे पासार संत प्रताप दुह पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौता करे आनंद चो जे आपे रस भोग अंदर जोग जिस भावत सपन नाए लावे जिस भावत खेल खिलावे बेसुमार अथाह अगंत अतुल।

पूर्ण पूरा दयाल सब उपरब कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रव्याप प्रतपाले जीवन पापां जो जो रचो सुत से त्यात जिस भाव तिसलै मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लागा हरे के राय तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक सेवा बनयाही हो गंभूज परम पद पाए स्थिर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार

घर पर ब्याह पे मेले साह संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरंगा यह स्वभाव आठ पैर पर पेखो रेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुनम दे सिर दे बसाव मन इच्छे नानक फल पाव हालत पल दो लियो सवार राम नाम अंतर द्वार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो लिब लाए दुख दर्द मंदे भाव जाए सच वापार करो वापारी दरगे निभे खेब तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर गाँव गो जाए परे राखन हार त्याय नर भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभ राखे तिस नाई दुख नाम जपत मनो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिजन को कोय ना पहुँचनार सिर पर ठाडा गुर सूरा नानकता के कार्य पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर भय मरापत पाया सा संग नान करते आया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपति संत संग अंतर प्रभु ढीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समयगरी एक घाट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नाव नित अमृत प्रभु का नाम देहि में इसका विश्राम सुन समाद अनत नाद कहना जाई आचार्य विस्माद तेन देखिया से आव दिखाए नानत जन सो जी पाए सुअंतर सो बाहर अनंत घटगट व्याप रहया भगवंत तरनवाए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पानी बह संद्र माहे चार गुण दिशे समाहे तिसे

राष्ट्रपति पूरे गुरुका सुन उपदेश पाल ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरहो अर्थन के पर लिहो पंडार नानगर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंगवार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफल ताका संग जागे मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गा जाय प्रगटे गोपाल महान के माथे नानक उदरे तन के साथे शरण जो शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संगलैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक नबी खेब हमारी प्रभु की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर जीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्वशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उज पाए स्थान बौर न होवे आमन जान हर तन खाट चले संजन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध्य सगल दे उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जप मन गोए सब जुग मैं ताकियत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत गय मन विश्राम कोट प्राद सासंग मिटै संत कृपाते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रपाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा

पहे भंगं बेपुहते परमात्म प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुहते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे।

भूते कलंकर रूपे अलंकर लंके नमो आस वासे नमो बाघ बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे कशरी छंद

निर्मल बारह निर्मल बारहता निर्मल जी अह निर्मल सतगुर ते करनी कुमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मन सा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे ता सनमुख से कोई जीओ रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतर आत्मै संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुर बिने अवर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुरते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थै कोई पुछो विवेकी।

रत्न आपे जिहनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रत्न है हीरा जित जड़ाओ। शिव सगत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए।

सतगुरु पाया। ए जो बुद्ध जन्म भ्रमया ता सतगुरु सब सुनाया। सतगुरु जे वरदाता कोई सब सुने लोग सब आया। सतगुरु मिला सच पाया जिनी विचो आप गवाया। जिनी सचो सच बजाया जिनी सचो सच।

तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक नह चो ध्यावे विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही बड़भागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ही मनुखा जन्म सफला कर रहे हो आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द भगत कबीर जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया होया तनासरी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 691 692

parte सुशोभिता। भगत कबीर जी ने इस पावन शब्द विच जो रहाउदा बंद बख्शिया

जस साध संगत थियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगस्यो भेख रंग को संभ को पर ग्रह जो जायो चरण क

हर सिमरत बिन सहे सब दुख राकोट जन्म के कर विकनाशय सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटत त्रि भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तिन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरन फिर गर्व ना दुख टोडी महला पंजमा हर हर चंद्र जय उर तारे सिमर स्वामी।

तै मन ने जीवन सूग ने हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, गुज कथा ए गुणते जानी, नानक बोले हर हर बाणी, सूही मैला पंजवा, गुज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी, सूही मैला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, भेट संग।

जाके सिमरन कछ पौने पंजवा गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अतारी रहाओ सासंग सफल मूर्त दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अधारी राव सासंग जन्म मरण निवारी

पछाने जो करे सोई परमाने आदि अंत की कीमत जाने कौन नानक तिस जन बलहारी जाके हृदय वसै मुरारी सुही महला पंजवा गुरु परमेश्वर करने हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमन मन त्याए दुख दर्द स्तन ते जाए राव भाव जल डूबत सतगुर काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे सात सतगुर की रहन वट भागी पावे नानक गुर कौ सद बल जावे सुही महला पंजवा गुरु अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभु अपना स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसे मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाए कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांगे संत रवाला सुही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा ए विनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद।

ब्रह्म की सनदन ताकि जन्म जन्म के पै मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा धारे सूही मैला पंजवा अनिक बिंग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ा लियो जनी अपना उर्ज प्रयोग जा।

चरण कमल जाई बलहारा, तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा राव। सासंग स्यों प्रीत बनियाई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जान साके तीने ताप। निमक निबसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही मैला पंजवा से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसन हर नाम विचारे। सुन बिनंती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला राव। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तसनेरा। जन की पूक तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवन हार। राम, राम।

पंजवा साध संग तेरे भय सागर, साध संग तरे भय सागर, हर हर नाम सिमरत नागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग शोक सब विनसे, गुरपुरे मिल पाप तजाइन राव, जीवन पद भी हर को नाव, मन तन निर्मल साध सुहाव, आठ पैर पार्वती आइये, पूर्व लिखत हो।

जो जो जपै तिसकी गत होवे हर हर नाम नित नरसन बखानी राव कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मैं परवेसा साधु दूर मुख मस्तक लाए नानक उदरे हर गुर शरणाए सुही मैला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देव पूरन

तुरमुख लाओ, मिष्ट बचन बेनती करो, दीन के न्याय ताजी अपमान सरणी परो, हर गुण निध पाई अवलोकन पुने पुने करो, जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो, बंदो बार बार चितवो मन आशा करो, जन का संग मांगो, नानक को प्रभ दया करे, दास चरणी लागो सुही मैला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड

मंगल गाया सफल दर्शन पेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरियै जी को बचन कमावै संतन का सो गुरु प्रसादी तरियै रहाव कोट तीर्थ मज्जन इस नाना इस कल मैं मैल परिजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै बीद कतीब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिस की निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरे सो कल मैं कट कट नानक मांझा सोही महला पंजमा जो किछ करे सोई

प्रभु सुमरस सुखवासी प्रभु सुमरस सदा विनाशी सुमरनते लागे जने आप दयाल नानक जन के मगेर वाला प्रभु को सुमरा से परोपकारी प्रभु को सुमरा तन सद बलिहारी प्रभु को सुमरा से मुख सुहावे प्रभु को सुमरा तन सुख बिहावे प्रभु को सुमरा तन आत्म देता प्रभु को सुमरा तन निर्मल रीता प्रभु को सुमरा तन दखनेरे प्रभु को सुमरा बस हरनेरे

जय मात पिता सुमित न पाये मनुहा नाम तेरा संग सहाये जय मा प्यान दो जम दलाय चय केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कुल होवे अत पारी हर को नाम खिन मायो दारी अनुपुर जन करत नहीं तरह हर को नाम कोट पा पर हर गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सकल सुज को राजा दुखियार का नाम जप थोए सुखिया लाकरोरी बंद न पर हर का नाम जब स्ने सरायन कुमार रंग तिख न बुझावे हर का नाम जब त्यागावे जय मार गे जा त्या केला तय हर नाम संग हो तो सोहे ला सा नाम सदा त्याय नानक गुरु परम गात पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तय पार पराही अनुभगन जाय आय संगारे हर का नाम तत्काल उदार है अनक जौन जन्म मर जाम नाम जोत पाप है विश्राम हो मैला मन कबू न तो वैर का नाम कोट पाप खो वै

कर खैत नानक हर हर अमृत बर खै भग जना के बर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट।

ओत बोत जनहर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जनहर और जपहर का पग प्रकट नहीं छपाए हर के भक्त मुक्त कर रह नान जन संकेते तरे पार जाते और को नाम काम तिन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनंदर दुख लथा नाम कि संतर दिवस संत प्रताप ध्रुव सब नसाय संत का संगठ पा के पाइया।

जाप ताप ज्ञान सब त्यान खाट साफ सर सुमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरया अनेक प्रकार के अब जतना पुन दान हमें बरतना श्री घटाय हमें।

अवर कर तो सगले जमडान गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दो जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ देखो मांगे साजना की सेवा लागे देखो अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे देखो अपनी शोभा लो रहे सा संगे हो मैं छोरा देखो जनमन ते डरा सा जना के सरणी पर जिस जान को प्रभु दर्श प्यासा नानी तांके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संजा का मिटे अभिमान आप को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल के रे ना हर नाम तेरे कट कट ती ना मन

निमान को प्रवतेरो मान शुक्ल घटा को देव दान कर्ण के नाम नहार स्वामी शुक्ल घटा के अंतर जामी अपने गत में जानो आपे अपन संग प्रवरते तुम रे होते तुम तो हो नानक न जान सुको सर्वतर में श्रेतर मार को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखाने।

कश्चित जाए। जय प्रसाद तर ऊपर सुख बस है स्वट बरात मित बनता संघर्ष है। जय प्रतापी में शीतल जला सुखदायी पवन पाप कामला। जय प्रसाद भोग्य सब रसा सब समग्री संग साथ बसा दिन अस्त पाप करने तरसना तिशे ते आगवर संग रचना। ऐसे दुख मुडंद व्याप नान काड लियो प्रव्याप आदन जो रखना अर्थ सुप्रीत न करे गवार। जाके सेवा नौनत पावे ता सोम उड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सच दा हजूरे ता को अंधा जानत दूर है। जाके टहल पावे दरगाह मानत सब सार मुग्ध जान। सदा सदा ए पुल नहार नानक राखनार पार संत्या कौडे संगरच साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छरणा सो अस्त्र करमा न जो अन सदुर परा न छोड़ जाय तिसका शरम करै संग साहि तिस पर हरै। चंदन ले पुतारे तो ए गर्त प्रीत बसम संग होए अंध को मैं पत विकराल नान काल लियो प्रभु दयाल कर तो पशु की मान जा लोक पचार करे दिन रात। बाहर पे खंदर मन माया छप

पास अपने अमान कचबार सावले अज्ञाने मन रोज करे अपनी प्रतीता पी खोए बरस का विश्वास न हो वाय जिसके बस साके रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसे जोगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक

जय प्रसाद सत्य खाय चाकर को रख मर माय जय प्रसाद सुगदन तन लाभ तिथो सिमर परम गत पाव है जय प्रसाद बसा सुख मंदिर तय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ बैर सिमरो तसुरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याग त्या मंजो जय प्रसाद पाठ पटंबर अडाम तिथ त्याग कतवर लुभावै

देह प्रसाद अरव कंचन दे लिवला ससराम सुनई देह प्रसाद रवला रात मन सो पावे हार हार जस कहत जय प्रसाद रस सकल सुदृढ़ ठाके मन सरणी प्र ठाकर प्रभु ठाके जय प्रसाद तो जो कहो न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताके भक्त करे जय प्रसाद अपोखन पैर जय मर्त सिमर क्यों आलस की जय जय प्रसाद स्वस्थ सवारी मन तस्प को कब न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलकत न राग प्रो प्रो अपने मना जनते रे मन मंत्र बनाई उठत बैठ सत्य सत्याई ति सत्याई जो एक लख ईहा उहा नानक तेरी रखाय जय प्रसाद

सुसाध्य वसना जय प्रसाद सत्कर्तला जय प्रसाद संपूर्ण फला जय प्रसाद परम गत पावन जय प्रसाद सुसाई समावाय ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तो प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप।

स्वर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हो प्रगाह प्रभु दयाते कौन बिगाह प्रभु सौ प्रसन्न बसे मन सो ए प्रभु दयाते मत उत्तम होय सर्व धन प्रभु तेरी मैं आपका चुना के नया जत जत लाभ तत लगे हर नाम नानी किन के चुना हा सलोक। हाँ

सो ज्ञान सागर संग बुद्धे प्रभ नेरा साध संग सबोतन मेरा सागर संग पाय नाम रतन सागर संग को पर जतन साध के मैं महाबरण कौन परानी नानक सागर शोभा ब्रह्मा समानी सागर संग गोचर मिले साध कर संग सदा पर फुलाए साध कर संग

पदे ब्रह्म ज्ञाने सुधाधर लय जस धर्म कमलालय ब्रह्म ज्ञाने सुधाधर दो जस सुर सर्व सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दुमान जैसे राज रंग को लागत तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कहते हृदय जो वसुदा को खो देखो चंदन लय ब्रह्म ज्ञानी का योग नाव नानक जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रगा जैसे तर उपर का ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय विमान ब्रह्म ज्ञानी उठे उचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के रे ना तमरा ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञान कुछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर से ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल दुखता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एको परा ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी सुमा ब्रह्म ज्ञानी पर्व करो मा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी रहता उत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के ओ सुबल

ब्रह्म ज्ञानी सदा सजाग ब्रह्म ज्ञानी बंते आगत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुसै निवास नानी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का व्यचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस कर प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भाग्य पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानी ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर

मिथ्यालय रचना पर समन में प्रेन्द्र रंजन दर्श पत्र रूपने पे कह नेत्र साध कृटाल संसंग हेत करना सुने काव की निंदा सत्य जाने आपस को मंदा गुर प्रताप क्या पर हरे मन के वासना मन ते डर इंद्रिय जत पंडो तेरे अतनान कोड में देखो ऐसा पर सुबह सुनो सो जिससे पर सो प्रसान विष्णु की माया ते हो पैन कर्म कर तो है न कर्म तो

लगना नाने करते के जाने करता रचना कई कोड़ सरजत जोगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कोड़ पंख द्रुप पाए कई कोड़ पाथर बिरख निप जाए कई कोड़ पौन पाणी बसुंदर कई कोड़ दसपो मंडल कई कोड़ ससियर सुर नखत्र कई कोड़ देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समगरी अपने सुतारे नानक जस जस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तम सत कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट किए रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए जल दिवे कई कोट ग्रीमर स्वर्ण दिवे कई कोट दक्षिण नरपेशा कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगा सबते नेरा सब दूर नानक आप लवत्रे अपरपुर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरसुर निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट बस जोनी फिराए कई कोट बैठ दिखाए कई कोट काले थक पाए कई कोट की अतरमंद कई कोट माया में चंद जय जय पाणा तत रख नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट पै बैरागे राम नाम संग तिन लिव लागे कई कोट प्रभ को जनते आत्म पार ब्रह्म लहंते।

जिसके अंतर्रात हनुमान स्व नर्क पाते हुए स्वान देव जाने में जो बनवंश विष्टा का जनता उसको कर्म का वह जन्म रे वो जोन परमावे पा तन पुम का जो करे कुमान स्व मूर्खा ज्ञान कर कर बा जिसके हृदय गरीब व्यवसाय नान क्या मुता के सुख पावे तन मंतावे कर कर भावे तन स्मान कर संग न जावे बोल उस कर्मान को पर करे आस पर विचरता का हो विनाश सबते आप जाने बलवंत खिन में जाए पसुमंद के सेना बल दया पंकर तरम राय तुझ करे कुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे अपमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिरसारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म निंद्र वह हर दरगाह को कष्ट का वह आपस को जो पला का आवे तिज बलाय निकट ना वह सर्व किरण जा का मनोय कव नाना नानक ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझे कथ हो तब उसको सुखनाए को जब जाने मैं करता

संग दुख दे सब जाए संग दुख नीचन चाहे सं दुख कथा को नाहे नान सुन पावे तो पिगत पाए संग निंदक मात ताए संग निंदक खन टेकन ना पाई

संगत संगत मिथ्याख्यात कीर्तन कतुरिपया नानक ज्योति पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी को दरका मिले सुधाए, संत का दुखी सुधा सकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए।

हम कियो सुध करो दिन रात तिसत आव सागिरा स सब कुछ वर्त जिसका किया जा सगरत सको थी अपना खेला करने हार दूसर कौन कहे बिचारे।

मारे रखे को आप मन के कितना ही आत तिसका हुकुम बुझ सको ए तिसका नाम रंग कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोई उस मन में का निरंकार कर्म मेरे साथ व्यवहार निर्मल रत्नामृत पियो।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जय सा सत सद साया अपने कारण में आप समाया सोदत सोद सोद सिद्धिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सो या सतोल ने कि जन्म ने किस मरे अपन चलता पी करे आवन जाम दृष्ट अंदृष्टाग्ञकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रहता प्रताप अविनाशी नायक खन तारण तारे ब्रह्मांड लाख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरे तन मंत प्रभु का सेव सगल दान प्रभु का सेव दुख विचारण आपे मेले कृपाल गुरु का सजा पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जगत पावे विश्राम नाने तन पुर कोतम कर मान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बस हर संग सह सुभाय वह सोए करने हर पछाण सोए प्रभु क्या गया जन मिट लगाना जैसा सत सदिष्टाना जिस

बृहस्पति अविनाशी ब्रह्म मेरे आकमान केतु प्रेत आगत से परे नायित को सर्व निरंतर को सोए अपे विनय अपे दाना गैर गंभीर गैर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल भक्त संसार तरे के चरणी पाओ नानक के मन अंदराओ मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जा करने तरफ और तुझका मंत्र न जाने और आनंद रूप मंगल सजा कर सर्व सौ स्ने करता के राज में राजयोग में जोगे तप में तप ईश्वर कृष्ण में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक जिस पर का कन्यंत न पाया जा के लीला कीमत नाय सगल देवारे अब गाय पिता का धर्म का जाने पो सगल परोई अपने सूत सुमात ज्ञान त्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे तुण में जंको परमाए जन्म रे प्रिया वे जाय ऊच नीच के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान न रूप नान जाके रंग न न पे कराय करंग नाना बिल किन्नो बेचार प्रभ न सी एक अंकार न चल करे किन माए पूर्ण पूर्ण सवटाए न मिल कर बंत बनाई अपनी

अत जिसके सिर सो करने हार अवन बुझ करते विचार करते किमित न जाने के आनन ज्योति पावे सोवरती आ विस्मन विस्म पै समाजन बुझात साया स्वाद प्रभु के रंग राजन राय गुर के वचन पदार्थ लाए है ओय दात दो कटन हार जा के संग तरह संसार दन का सेव सोवड़ पागे जन के संग एकले

आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी सब सत सब प्रवक्ता सुरत सत सत सुनता भोजन अर्क सत सब हो नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरव जन मान्या करण कराम त्रमूल पचान्या जा कह हृदय स्वा प्रभाया तद ज्ञान तद मान प्रगटाया पैति निरपोहे बसाना जित जत तुमाय समाना बस तुमाय ले बस गाई तं गोविंद न कहना जाय बुझे बुझ नार बबे नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा

अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेव के सर पर राखे, अपने दाखो दे बटाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेव की आपत राखे, ताकि को न राखे, प्रभु के सेव को न पहुंचे, प्रभु का सेवक ऊंचते ऊंचाई। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेव दया दिस प्रगटाया, निकी गिरी में कद राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका साधन काटता को राख देख रहा, मानस जतन करत भो भारत।

अरण्यम हृदयमन सगुर के पाते सेवक कार्यरास सेवा कर तो इन्हें काम जिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाने सो सेव गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो से परमेश्वर की गत जाने सो सात गुरु दूसरे देर नाव मन कुमार गुरु को बल जाऊं श्रमदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता

वायको सताने सत्पुरम पूर्ण बाबे का बोलना पच प्राणी अगम गोचर प्रणी निराहन्द्र भैर सुखदाय कीमत के न पाई अनेक भगत बंदा निध करा चरण कमर दस मर सद बलिहारी सतगुरु अपने नानी जिस प्रसाद है सब रोज अपने रस पावे जिन को अमृत पीवे अमृत सो इस पुर का नाई कदे बिना सो जा के मन प्रगटा गुंता सो

ते पावें। जय सको नाचे में सजो साधु संग परे जय सभा को करा पली करनी सतर कीर्तन यान को पावे रोग न जाए रोग मुंडे हरे खुद लाए शरण धान मेरे नाम दान दपना ने दरगह प्रवान मन प्रभो दो हर के नायंदा दुताव दिया बैठाए ता को विघ्न लागे कोय जा हृदय बसे हर को हर सोए।

डोलाना सुप्र प्रे प्रेम सुरंग उपदार कैसंग पर शरणान सब त्यागंतर प्रकाश अंधन लाग उड़ पागी जब प्रभ सोये नानक नाम रत सुखो सेवक मन सब

नेत्रोभ्यग्दर्शु को मन विशेषा चरण तो न के मंत्र रंग बिरला को उपाव संग एक भक्ति दे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप ले था कि उपमा कहीं न जाए नान क्रिया सर्व समाय प्रभु संदीन दाय आल भक्त सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुर करण करता भगजन के प्राण आधार जो जो जपे सोए पनीर पद पायला वे मन हित

संत संगांतर प्रवटिटा ना प्रभु का लागा मिटा सगल समग्री एक कटुमाय निक रंगना न दुष्टाय नौ निजम्र प्रभु का नाम दे मेषका विश्राम स्वर्ण समाधान तैन के न जय चल विस्मातन दिखा दिशा दिखाए नान तेजन सो दीपाय सो अंतर सो बार अनंत कर व्याप्रया भगवंता

जय जय सर्वनाथ बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगट गोपाल मात के माथे नानक उदर तिनके साथे सारण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट

0: प्रभ को सिमरहसी सुखवासी
1: को सिमर सदा विनासी
0: सिमरन ते लागे जिने आप दयाला
1: नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरह से पार उपकारी
1: प्रभ को सिमरह तिन सत बलिहारी
0: प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे
1: प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे
0: प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता
1: प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता।

0: बनियाई।
1: साध के संग न कब हूं तावै,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त अगोचर लह,
0: साधु के संग अजर सहे।
1: साध के संग वसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग महर पहुंचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के करबान।
1: साध के संग सब कुल उधारे,
0: साध संग साजन मीत।

0: संत कै दुखन तेज सब जाए,
1: संत कै दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाउ को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओ भी गत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खिंट कर ना पाए,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा।

0: किसको करी।
1: जब एक हर अगम अपार
0: तब नरक सुर को कौन अवतार।
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए
0: तब शिव सकत को होके चढ़ाए।
1: जब आपे आप अपनी ज्योत तर
0: कवन निर कवन कत डरे।
1: आपन चलत आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार।
1: अब नासी सुख आपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास को किस होए।
1: जब अविगत अगोचर प्रभ एक जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
1: आपन आप ही अचर्जा
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा।
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत

0: सब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: सब कमल माए बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आपे प्रवीण
1: तै वेद कतेव कहां को चीन
0: सब अपन आप उर धारे
1: तो सगन पर सगन कहां विचारे
0: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: तै कौन ठाकर कौन कहिए चेहरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपने गत जानो आप
0: जय अछल अशेद अभेद समाया
1: किसे व्यापक माया
0: आपस को आपे आदेश
1: तै गुण का नाही परवेश
0: जय एक है एक एक भगवंता
1: तै कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: तै कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु व्यंत ऊंच ते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर

0: कछ करा।
1: आप भला करतूत अत निकी,
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साच तारी सब साच,
0: बोध बोध आपन संग राच।
1: ताकि गत मित कही न जाए,
0: दूसर होए तो

0: की फतेह। तुम ठाकुर तुम बहरदास जो पिन साध तेरी माँ पिता हम
1: गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासें होए सहाए। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराउ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना उन दे आवे ताए। सब थाई होए सहाए। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाए।

जगदीश सो हमरी रथया करी गुरु कल गीत हर जगदीश भले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

माई मेरे मन को सुख कूट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सै सब दुख रहाउ कूट जन्म के किल बिख नस है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूरन पई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इतनी की सेवा प्रवान करनी हुई अपना दी खेमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री गोरा परिवार शब्द कायम करेंगे। वाहिगुरु जी का सा वाहिगुरु जी की फतेह।